0: sono i vaccini.
1: Namaste, come ho detto per avere su pace di questo.
0: सब लोगों ने मारो राम राम पहुंचे हम अठे राजी खुशी हैं तुम अठे राजी खुशी राजो।